0: देखो अंकल, जानक दे जोड़ेगा तुंगा मेटा जोड़ के पे याने ना रोना तांबूरी
1: का ला ला ला ला ला ला ला ला
0: ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला
1: ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला
2: 12.3 FM 12:15 மாய